0: This is what? Faster. Dulpots fast sight with. Okay. So format to a shikso patolo. Mando Kushin, a love song, a love ballad. Ata Dulpodani kite galche. Dulpodani amikite kurta. Current issues geta. Now see in this new mando what I've taken. Shant Nisha, Shubh Nisha, Dara Ukti Dorun Nido Asli Suraksha, Ata Grills Katrun, Saila Dara Fodun, Borya Ponachi Urankna Asha. Birant, second verse, second. Birant Asli Re Kaidyachi, Ata Bailo Chor Ghorcho Bedhi, Chorani Kalya Manni, Chollole Vantun Khata Los Kedi, Ata Pulisut Sutta, Chollole Varan Vikta, Kon Konang Dutta, Govai Namun Sodundita. This is actually some incidents that are happening in Goa. Bar, polla matyaru, kite korun diskoshe saru, chitun zale jaru. Patrao sangta gadi geun kamang vatsnaka. Kitens keler bangar munta vikten genaka. Kone sangla? Bangar genaka mun. Not to go in. Okay. Ata. Tani sangla nu? Bangar gena tor bail munta fudyant yanaka. Bangar na tor mai munta kazarut zainaka. Okay, so what we are doing? We are giving our version. Ata garantalona, garantalona, bong osnaka mudlanu. So, the thing. Bejar zalo santu, rawon garantu, odez varsani, tin burgi, welcome sansarantu. Tin burgi, welcome sansarantu. Then see the next one. O bustyao modela. Bustyao modela, modela is mudmalla mundanu. Sarko chorbela. Sotor pirayer kazar zaun fulola. Sokad fude utta misakoson bosta. Mis satogo chedova bailang dode modita. Perpeta gra gailo. Bonso fulolo. Tha tapot marun tazo suzoilo polo. Ava zaikon taptacho padvigar patya railo. Dusre aitarar taptacher sermao sangilo. Okay? Margai saiba podoi tinkli molbak. आमचे वरून खताई चोरून जायना साहेबा रावपाक 10,000 लोनाक लागून गोरिबा गोर पावणेर काडटा क्रुटांचो गोलमाल केलेलो पोळो नाता युके रावता हाय हाय हाय कांयच ना रे सवाय मारकाय वाडून गोरिबांकूच कित्याक तुम्ही नाडटाय ओके सो दिस इज नाव अ मांद दुलपोत नाव इफ यू आर डुईंग अ प्ले कसली प्ले भुत्ता नाटक कोत्ता वन एक प्ले बरयता जाल्यार कितें आसपाक जाय गरजेचें If you are doing writing a one-act play, there should be unity of place, time, action. Unity of place, munche kide. Suppose tujo play ya podiumacher komes jata, it should finish here. Tinga komes jaun, you can't end it in your canteen. There is no unity of space there. Unity of space, unity of time, unity of action. Zor tu ek tiyat bharita. Tiyatrak. सो नातोर सात पड्डे भाग आसता तियात्रान कांतारां आसता कांतारां सोलो डुएट डुओ त्रियो क्वार्टेट क्विंटेट कोरल हे आसोंक गरजेचे कॉमेडी आसा ती प्लेयाक भितर आसपाक जाय यू कॅन हॅव इंडिव्हिज्युअल कॉमेडी इंडिव्हिज्युअल कॉमेडी जाल्यार इट इज नॉट तियात यू गॅट इट फायन आय हॅड टू वॉन्टेड टू स्पीक अ लॉट जायते सांगचे दिसता म्हाका तुमच्या कडल्यान कितें करून घेवपाक जाय आसलें बट टायम इज नॉट परमिटींग सॉरी सो प्रश्न आसा मांदो बरयता जाल्यार पयली ट्यून काडटा चाल काडटा आनी बाकी शब्द घालता आतां खरें तर पळयतलो न्ही पयली उतरां येता लिरिक्स कम्स फर्स्ट आनी लिरिक्साच्या कितें सार आसा त्या भाशेन म्युजीक येवपाक जाय फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर डुईंग समथींग हॅपिली बाय बस It's there are happy lyrics. Then you can't start on minor note. Chodshe mande minor chordache start jata. Zor tujo happy mode ha. You can't start it on minor. You have to do it on major. So pohile utram borop bore. Okay. Amka those who are versed with music also. Ami sangatan karta. Can I music helps you to get a better word? And sometimes lyrics help you to get better music. Okay? Pun lyrics sacher music kaadop उदीक बरे
1: देव बरें करूं आसा तुमकां. आमकां वेळार ह्या मंचेर येवन आमच्या विद्यार्थ्यांक तुमी कितें शिकाप दिला आयचे दिसा कितें शिकोवन दिल्या तांणी ती घेतल्या म्हणून हांव पातयेतां. आमच्या ह्या सभांगणांत एक नायिका आतां मुखले उलोवप आसा. मनांत एक बाब प्रशांत मारता हांव न्हू.
2: आयच्या दिसा आमकां आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे सृजनशील बरोवप ह्या कार्यकार आयचे संपूर्ण व्यक्ती जावन आमच्या सांगात आसात भोव मनादीक बाब प्रशांत वलेरेन मारता. हाची मोठवी परिचय दिवची जाल्यार सेंट अलोशियस कॉलेज मंगळूर प्रिंसिपल जावन आसले, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर हांगा डिरेक्टर तशेंच करस्पोंडंट जावन आसले, सेंट जोसेफ्स युनिंग कॉलेज बेंगलोर हांगाचो प्रिंसिपल, बेंगलोर आर्च डायसन बोर्ड ऑफ एज्युकेशनचे सेक्रेटरी कम ट्रेजरर, डिरेक्टर MBA प्रोग्राम पॉंडिचेरी युनिवर्सिटी बेंगलोर सेंटर, मेंबर ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ एनसायक्लोपीडिया ऑन रिलीजन हम्पी कन्नड युनिवर्सिटी, प्रस्तुत आमच्या कोंकणी संस्थेचो डिरेक्टर जावन आसात. हांकां सभार प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात. हायलो तोडो हे जावन आसात कन्नड साहित्य कर्नाटक राज्याचो प्रशस्ती 2024, कोंकणी साहित्यीक दैजी दुबय आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती 2024, कोंकणी साहित्यीक 2019 वीन संदेशा प्रशस्ती, फेडरेशन ऑफ कोंकणी कॅथलिक असोसिएशन ऑफ कर्नाटका हांणी लाईफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिवन गौरव दिवन गेला, बॅरीन कोंकणी कुटुंब प्रशस्ती, इंडिया टुडे मॅगझीन पत्रान 50 पेनर्स ऑफ चेंज ऑफ इंडिया हांतून एकलो म्हणून विंचून घेतला. हांणी 3 बसांनी 16 बूक बरयल्यात, हांतून ऑन इगल विंग्स द हिस्ट्री ऑफ सेंट अलोशियस कॉलेज तशेंच 4 डिक्शनरीचे संपादकाचे काम सोलून वेला. आतां तुमचे मुखार फादर प्रशांत मारता.
3: आतां तुमचे पैकी कोण राईट हँड उजव्या हातांत बरयताना उजो हात यूज करतात कितले जाण? उजव्या हाताचे, दाव्या हाताचे, दाव्या हातांत म्हळ्यार उजव्या हातांत तुमी उजव्या हातांत बरयतात, दाव्या हाताचे बरयताना दाव्या हाताचे यूज करतात. तुमी कॉफीक शुगर घालतात, साखर घालतात, दाव्या हातांत शुगर कोणें घालतात, स्टर करतात दाव्या हातांत मग थोड्या उजव्या हातांत थोड्या दाव्या हातांत. हांव बरयतना उजो हात यूज करना, हांव स्पून यूज करता. उजो हात कापयेंत घालना अशें करना आनी बरयतनाय पेन्नांत बरयता, हातांत बॉट इंकांत घालून बरयना. हांवें आतांच विचारलें हांकां कितें ही समाना हांव म्हणून, कळ्ळें ही समाना तुमकां कळटा की काल समाना म्हणून कोणाक कळ्ळें की फुडलें आमचें मन कशें काम करता. हांवें तशें सांगलें तशें न्हू आमचें मोत आमचें ब्रेन कशें काम करता कळ्ळें समाना खंय कशें. हांवें त्या एका उतरान एका वर्डान सगळ्यांक कंट्रोल घेता, तुमचें चिंतपा रीत तुमचें कुडली मोत ब्रेन कळ्ळें समाना हांग. तशेंच आमी अण्णाका मनशा विशयांत अण्णाका फंक्शना विशयांत तुमकां सगळ्यांक डिरेक्ट करयत, इल्ली तकली यूज करून सगळ्यांक कंट्रोल करयत. तुमची सगळी ब्रेन हांवें कितें गेली कळ्ळें समाना तूं पक्कन. हांवें सांगलें जाल्यार कितें बरें बरें आसा हांगा, कितलें बरें गेलां आळे व्हडलें एस्पायरींग रायटर्स व्हडल्या अक्षरांनी घालां, म्हजें नांव येदेश मूं येद्या अक्षरांनी घालां तशें चिंतयत न्हय. आज आमी उलोवचे भाशे विशयांत, ही भास यूज करून आमी कशें मिनींग क्रिएट करयेत, मिनींग रचयेत त्या विशयांत आमी उलोवचें. हांव जाता तितलें वेगळी मुख दिता म्हजें भाशण. तितें वेदळचो बांगड्याचो परमोळ येवंक सुरू जाला, कसो बांगडे घेया ताटले ताटले ताटले खंय हें बरो सुरू जाल्लें केदाळां. आमी केदाळां क्रिएटीव जाल्यां जाय की क्रिएटीव सृजनात्मक रायटर्स. आमकां कोणें आमी सृजनात्मक रायटर्स जायना अशें पळयलें. सुमार वर्सां आदीं चिंता तुमी धाकटो भुरगो जावन आसल्यात भुरगें जावन आसल्यात सकाळीं सकाळीं 7 वरार उठल्यात मामा मामा चिची चिची मामा चिची आय डीड इट येलो कलर सो स्वीट. आनी हांव ताच्या रावंड रावंड येता कित्याक म्हळ्यार आवट ऑफ नथींग आय डन दॅट. आयकलें शुन्य तावन झिरो तावन हांवें हें रचन केलां म्हज्या जिणेंत, म्हज्या जिणेंत त्या भुरग्याच्या जिणेंत फस्ट टायम आय डन समथींग आवट ऑफ नथींग. कशें हांव शब्द प्रयोग करून पोएम्स सांगतांगी स्टोरी सांगतांगी चिताप सांगतांगी वेन आय वॉज बॉर्न फर्स्ट थिंग आय डीड वॉज अँड मम्मी कम्स स्टुपिड फेलो यू डीड इट हियर कितले पडे तुका सांगला चिची हांगा कर नजो म्हणून तशें म्हणून थोडी स्टुपिड फेलो जाले एकलो क्रिएटीव रायटर मेलो ताच्या बदला मम्मीन सांगलें तर यू डीड इट ओ माय यू डीड इट कंग्रॅट्स इज सो नायस सो नायस सी द शेप सो नायस व्हेरी नायस कंग्रॅट्स बट नेक्स्ट टायम वॉट वी डू इज आय हॅव टू सी हियर दिस इज कॉल्ड टॉयलेट टॉयलेट इट इज टू मीन्स टू लेट लेट इट आउट टॉयलेट यू डू इट दिस वाईट स्पेस नो सो क्लीन नेक्स्ट टाईम यू डू इट हियर बट कंग्रॅच्युलेशन्स वंडरफुल यू डन अ वंडरफुल जॉब बट यू डू इट हियर you got a poet you got a creative person because the most significant person amcha genius significant person's mother appreciated my first poetry first creation first literature my mummy appreciated it so also mummies can destroy that creativity by not appreciating the child says it's so mummy is in the kitchen is so color is so good I'll take some this white wall is white doesn't look nice I'll make it yellow color when mummy comes she will appreciate the white now has become yellow so good paint so I'll use this paint mummy come see I put color through the wall I created picture you did it congratulations I'll show it to daddy when daddy comes well sir today we celebrate I'll bring ice cream not this ice cream other ice cream and we'll celebrate your first creation your first poetry first literature how the most significant amche significant people amcha avai bapain kashi amka poet create asle tumcha paiki kon poet nahi literature barunage that means तुमच्या मम्मीन तुमकां जोर केलें त्या दीस फस्ट टायम कोण पोएट्री बरयतात गी तुमचे पैकी साहित्य पुरो आसात पळय तुमचे पैकी तांकां म्हळ्यार तांच्या मम्मीन सांगलें कंग्रेच्युलेशन्स दॅट डे मम्मी यू सी वॉटर आय डीड दीस वॉटर फ्रॉम नोवेर आय डीड दीस वॉटर युरीन सी दीस वॉटर लुक्स लायक आफ्रिका दीस लुक्स लायक ऑस्ट्रेलिया मम्मी सेज वंडरफुल मॅन See, you have created continents, picture of continents through this. You are a wonderful person. One day you will become a great person. Now we know we are creators. We are creators of meaning. Artha Swami Rasan Kartav Nirmapakami. Amka te taakata sa. Amka amcha avayva pain tadala amka encourage kellendalar. Shabhas mullendalar. Bhoswami Sakkadu. Creative writers, creative person, creative scientists, that is it. The appreciation of our own, because you are the first one to come here, right? Dayakarna, Tyadisa, Mami, Kam Mami, See Mami, Muntana, you know, appreciate kara, tumcha burgyank, congratulate kara, khushi pava. Dale, mujhe talk it lens. Ani kala question asa, jauna. Ame introduction hi divana idu, it lens. Hello. तुमच्या पैकी कोणाक काना फेस्ताचे काना काजाराचे गोत आसा की तुमकां मॅरेज एट केना क्रिस्तांव गोत आसा जेणे गोत आसा की ना फिस्ट एट केना जेजू येता उदक आसना वायन करता उड आसना यू डू नॉट नो यू नो नो वाय डोंट यू से यस वी नो त्या दीस त्या विशयांत इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन आसलें जेजू येता ते उदक दवरलां म्हटल्यार हंड्यांनी उदक दवरलां स हंड्यांनी भोवशें उदक दवरलो जेजू येता तांचे बेसांव घालता उदक आसलें वायन जाता एक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन केलें ह्या काजारा विशयांत मॅरेज एट केना हाच्या विशयांत कोण बेस्ट पोएम बरयता गी तांकां फस्ट प्रायज हे आजून जाल्यार हे बेस्ट पोएम जावन उरलां केना शहरांत जेजून वचून तें उदक हांड्यांतलें उदक पळोवनचें ते उदक वायन जाता पोएट कसो पळयता भोवशा हो पोएट एकलो जेजवीत जावन आसलो जेरड मॅनली हॉपकिन्स म्हूण पोएट कितें जाला 17th centuries, Gerard Manley Hopkins. தான் ஏக்கு போய் முறையில் காம்படிஷனை கணி தக்கா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லை கண்ணே கால முறையில் எப்போயும் வேர்ஜின் வாட்டர் சா ஹர் லார்ட் அண்ட் பிளஸ்ட் பிளஸ்ட் ஜேசுன்னு வாங்கி ஊதாக பிழையில ஊதாக ஜேசுன் பிழை தான் தச்சேன் ஜேசுச்சேன் பிரதி பிம்பு ஊத்கான் தீஸ்ல ஊதாக சில இல்லை இல்லைன்னு தமிழேதான இல்லை வாங்கி நான் பரி தமிழேதான இல்லை அச்சாக்கி போகிற கவன் புரியதுக்கு அக்கா கிரியேட்டிவிட்டின்றது சிருஜனாத்மக் எக்கு சிம்பிள் இவெண்ட் கட்டன் கசோ போயிட்டு துசா சில தின் பிள்ளைதா கேளம் வாட்டர் வேர்ஜின் வாட்டர் அவங்க குவார் ஊதாக்தேன் பியோ ஊதாக் பியோ ஊதாக் ஹண்ட்ரட் அண்டோர்லாம் வேர்ஜின் வாட்டர் பியோ வாட்டர் சா ஹர் லார்ட் ஜேசு தச்சர் பெண் தானா தச்சர் பிரதிபிம்பு உத்கான் தீஸ்தா பிரதிபிம் சா ஹர் லார்ட் வேர்ஜின் வாட்டர் சா ஹர் லார்ட் ஜேசு வச்ச பிரதிபிம்பு உத்கான் போட்ட அண்ட் வேர்ஜின் தக்டின் சேடும் 16-17 இயர் சேடும் லார்டாக பிழைத்தானா தச்ச தோன் கஷன் ஆயிடுத்து பொயிலப்பட்டி மோகார் படுத்தான சா ஹர் லார்ட் அண்ட் பிளஸ்ட் தோன் சங்கில் தமிழை தமிழை தவன் கேள்வி பிளஸ்ட் போலீஸ் சங்கர் தமிழை தலை மலர் ஊதாக் வாங்கி தலை முடிச்சா பதிலாக ஷி பிளஸ்ட் அதை கல்ல காவிய காலமா பெஸ்ட் காவிய காலமா என் பரி ஊதாக் மாத்திர நெய் ஜேசு மாத்திர நெய் தன போல வச்ச மாத்திர நெய் சம்திங் ஹேப்பன் வேர்ஜின் வாட்டர் சா ஹர் லார்ட் அண்ட் பிளஸ்ட் இட் காட் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் அவார்டு சம்ஸ்கிருதாந்து பெஸ்ட் போய்ட்ரி காஷ்மீர் அந்த புறம் இல்லை பூஷத்தோ ராஜசேகர் பூஷ போய்ட்ரி ராஜசேகருக்கு ராஜமூர்த்தின் தானே என் கவன் புறம் இல்லை லலித லவங்கல தாபரிசீலன கோமல மலைய சமீரே மதுகர கரம்பித கோகில கூச்சித குஞ்ச குட்டீரே சந்தன சர்ச்சித நீல களேவர பீதவசனவன மாலி கேலி சலன்மணி குண்டல மண்டித கண்டு யுகஸ்மிதாலி ஹரிரிஹ மக்தவ தூணிகரே விலாசனி விலசதி கேலிப்பரே சம்ஸ்கிருதாந்து ஹல் சபார் புரி சுபீத் போயம் சத்து கவன சத்து ஏன் ஏ கவன் சுபீத் கவன் கித்தியா சுபீத் அந்த சப்த முகாந்திரு த மூவ்மெண்ட் அசா கேலாம் சப்த முகாந்த் லலித லவங்க லவங்கம்ளர் ஏழு காடமம் காடமம் லதா லதா பரிசீலன கோமல மலைய சமீரே பசிம கட்டத்தாவனு எவ்வளோ வாரேன் தஞ்ச ஏழு காடமம் தொப்பூர் மூழ்கேவனு லவங்க லதா கோமல மலைய சமீரே சமீ சமீர் மலர் வாரேன் தண்டு வாரேன் கஷாயில் மலர் தென் கா காடமா மச்ச ஏழு தொப்பூர் மோள் புற காணியும்னு ஆயில தென் லைன் ஐக்கத்தானு சம்கி தம்பா வாரேன் லதா லவங்க பரிசீலன கோமல சாஃப்ட் கோமல மலையா வெஸ்டர்ன் காட்டத்தான் சமீரே வாரேன் எம்ஜே கொஷே மகிர ஊரில் அசாத்து கொஷே கிருஷ்ணாச்சே கிருஷ்ணாக்கு எங்கே தக்க கொசை லேப் காட்டும் ஜஸ்ட் ஷோக்கனுக்கு சாகித்யம் முழக்கித்தேன் கஷன் சாகித்யம் கிரியேட் ஜாத்தா கஷே அமை மீனிங் கத்தா சொப்து காணணும் சொப்து காணணும் கஷே கத்தா ஓம் ஜஸ்ட் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ்